0: युवा पीढ़ी स्ट्रीट्स पे आ गए थे प्रदर्शन करने के लिए उसको लेकर, इन दोनों चीजों के बाद आज ये जो सीजेपी की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन भवन में होगी, इससे हम इसको हम कैसे देखते हैं, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है?
1: देखिए बिल्कुल 12:30 बजे के करीब जो है सीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे और ये सेकेंड राउंड की मुलाकात होगी। सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि जो मुलाकात होगी वो सरकारी दफ्तर या फिर जो है जेपी नड्डा के घर पे होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात जो सामने आ रही है देखते हैं उसमें है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने अपना रास्ता बिल्कुल साफ किया। कल रात देर रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचू से मुलाकात की, उनको समझाया कि जो भी एजुकेशन सिस्टम में सुधार होने हैं वो सुधार किए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, पेपर लीक को लेकर जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, सरकार और फुल प्रूफ जो है सिस्टम बनाना चाहती है जिससे भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो जारी भी किया जिसमें कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में जो है एक नया बिल जो है वो लाया जाएगा जो पेपर लीक मामले पर और कड़े और कठोर कानून को बनाने के लिए, और संसद के सत्र के दूसरे सप्ताह में जो है इस बिल को दोनों ही सदनों से पास कराने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो सोनम वांगचू को बताया सरकार जो है वो यूथ के लिए एजुकेशन के लिए जो है लगातार कदम उठा रही है, जो गलती हुई है पेपर लीक की उसको लेकर कड़े से कड़े कदम बनाए जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की कल गठन की बात कही गई थी और देर शाम जो है उस अपॉइंट भी कर दिया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट को, तो ये एक बड़ा मैटर है, इसको सरकार अपने ढंग से देख रही है। सीजेपी के प्रोटेस्टर जो है सेकंड राउंड बातचीत के लिए जो है दोपहर 12:30 बजे जो है वो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलेंगे।
0: हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर। Yes, it will be a very important day that we see unfolding today because yes, day 5 of the monsoon session, what happens inside the parliament as well as the CJP delegation meeting the union ministers at the Constitution Bhavan, all of these happening at the same time, simultaneously on parallel tracks. We will keep a close watch as to what pans out of each of these events. But on that note, with more breaking news, let's quickly take a look.
2: Some people, no?
0: On that note, viewers, we have more breaking news. Fresh government olive branch, government's biggest assurance to the protesters at this given point. The government is positive on no case against protesters. JP Nadda comes out to say this in that interaction with Sonam Wangchuk right before he broke his hunger strike, that there will be no case on the peaceful protesters of July 20th and even the ones at Jantar Mantar. July 20th, Pal March participants are to be spared. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully in Jantar Mantar, those participating in the march to Parliament on July 20th. This is a big assurance, viewers, that's come in because over the last 3 days, 72 hours that we have seen pass, a little over that, today is July 24th as we speak, there has been a lot of information and misinformation with regards to how the government is to tackle the entire challenge that had come up before them in terms of the fallout from that very protest of July 20th. There were major allegations by protesters with regards to police brutality. There were major concerns also that were going around with regards to whether there were FIRs being registered, who all will be named in those FIRs. There was the entire matter of how police would be recognizing people involved in the particular exchange between the police and the protesters and then arrest them or take action against them. All of this, there was a lot of hue and cry, there was a lot of conversation, a lot of speculation over all of this. But now, this comes in as one of the biggest assurances because one thing was very clear that even on July 20th, there were several student protesters who in fact were on the ground from Jantar Mantar itself. And then the situation, yes, there was a lot of chaos.

0: हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी।
1: दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है, ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात।

0: हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं, क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी।
1: दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है, ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज हमारे, और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जन प्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात।

0: 1995 पंजाब, जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी।
1: What exactly is the fear?
0: इस तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे।
1: A fear of a film.
2: पुलिस के नाम वापस ले लें, वरना मैं गाड़ दूंगा जिंदा।
1: A fear of a performance.
2: 25,000 लाशों के हिसाब के साथ।
3: ये मनुष्य अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। मैं पीछे नहीं हट सकता।
1: Or fear of history being seen, heard and remembered.
0: नदियों के पानी का मसला हो या फिर 84 के दंगे।
1: Because when a film has to be taken down almost as soon as people begin watching it, you can't help but ask, what is that someone doesn't want the audience to see?
4: अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है।
1: Because Satluj wasn't just another OTT release.
5: फिर कुछ दिन बाद पुलिस साइटन शो के लिए गए।
6: फिर?
5: हीरो कभी वापस नहीं आए।
1: It became a conversation, a movement, and for many, a painful reminder of a chapter of history that refuses to fade away.
4: बल्कि सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है।
1: It was a film that survived years of delays.
0: बात समझ के कह रहे हैं, छोड़ दे सब।
1: A film that refused to bow down to over 100 suggested cuts.
3: किसी को तोड़ के लिए आगे आना पड़ेगा।
1: A film that finally found its audience. And now, barely a day after its release, it has been taken down from streaming in India until further notice. The streaming platform has stated that it is exploring legal options to restore the film for viewers in India. The decision has triggered outrage across social media, with many questioning why a film that had finally reached audiences was pulled back almost immediately. Amid the growing debate, Diljit Dosanjh also broke his silence and wrote, I challenge the darkness.
2: 25,001.
1: So why has this film sparked such an intense reaction?

0: And well, all eyes now on the government CJP meet that is set to begin shortly ahead of the meet. Nadda and Jitendra Singh, who have met with Amit Shah. JP Nadda and Jitendra Singh are in a key huddle with Union Home Minister Amit Shah. Now, according to sources, JP Nadda and Jitendra Singh are meeting with Union Home Minister Amit Shah for discussions prior to their meeting with CJP representatives. Remember, this is the second round of the meeting that will happen between CJP and the government. The talks that are set to begin at 12:30 p.m. CJP has said that the meet with Modi ministers is at the Constitution Club. Remember, that was one of their demands that they had stated, that they will not meet the minister at his residence or his office. And yesterday it was JP Nadda who had also put out that message that the government will meet either at his residence or his office. But that was later changed to the Constitution Club, which is now the venue of this meeting. Sonam Wangchuk has broken his fast after 26 days. And now we cut across to the latest proceedings in the Lok Sabha.
1: देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं यह आश्वासन भी दिया हुआ है अभी एक बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं आप कंडीशन मत डालिए हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी
2: मेरी बात सुन मैं दे रहा हूँ समझ मेरी बात सुन ले मैं समय दे रहा हूँ मेरी बात सुनने राहुल जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया उन्होंने आग्रह किया है कि आज इस जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं सरकार चर्चा के लिए तैयार है मेरी बात सुन ले चर्चा के लिए तैयार है तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा तैयार चर्चा करने की बात है तो मैं आप सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली टेक योर सीट मैं आप अपनी सीट पे जाएं मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा आप काइंडली क्लियर द पैसेज आप क्लियर करें सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो 13 लोग जेल में हैं इस पे कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता प्रतिपक्ष का सवाल नहीं अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार आप कृपया बैठ जाएं इंजीनियर राशिद साहब आप क्या कहना चाहते हैं एक मिनट रुक जाइए राहुल जी एक मिनट पेपर ले कर दे फिर आप मुझे एक मिनट यू आर क्वाइट अवेयर द प्रोसीड्योर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस. सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है. देखिए, स्थगन सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है. तो पहले स्थगन प्रस्ताव का बैठ जाइए. हाँ बैठिए, काइंडली टेक योर सीट. स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की. शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी. और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाए, सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर. अब बैठ जाइए अर्जुन. मैं दूंगा पेपर रखने के बाद दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी. आइटम नंबर 3 की प्रताप राव जाधव जी.
3: मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम से सम्मोक उन्नति विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पे रखता हूँ.
2: आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी.
1: I rise to lay on the table of the house the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's
2: item system. Number 5 Sanjay Seth ji.
4: Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the house a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business.
2: Sabha ki baithkon mein se sadasyon ki anupasthiti संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए. क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा. आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी.
1: ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट शोइंग एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन कंटेन्ड इन द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी एज लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 7 इन टुडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस. थैंक यू सर.
2: आइटम नंबर 8 श्री जियाउर रहमान जी. जियाउर रहमान जी
5: सर.
6: शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो.
5: ये रिपोर्ट
6: वर्क शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो
5: व्हेन द हाउस वन नॉट इन फैशन एंड फॉर मी टू ऑन द स्पीकर
2: अर्जुन राम मेघवाल जी
7: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू अनाउंस द गवर्नमेंट बिजनेस ड्यूरिंग द वीक कमेंसिंग मंडे 27th July 2026 विल कंसिस्ट ऑफ नंबर वन कंसिडरेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस कैरिड ओवर फ्रॉम टुडेज ऑर्डर पेपर
2: प्रहर में भी आपके
7: ऑन स्टेट्यूटरी रेजुलेशन सीटिंग दिस अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नंबर वन ऑफ 2026 एंड कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट बिल 2026 नंबर दो कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 आफ्टर इट इज इंट्रोड्यूस कंसिडर्ड एंड पास्ड बाई द राज्यसभा नंबर थ्री consideration and passing of the micro small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced considered and passed by the Rajya Sabha number 4 discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction consideration and passing of the related appropriation bill thank you sir
2: niyam 377 ke adhin jo mamle sabha patal par rakhne ke liye adhyaksh dwara ki jane liye उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं जो नियम 377 पे और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं अगर नीट पे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है तो आप इसको बिजनेस नहीं ये स्पीकर तय करेंगे ये स्पीकर साहब तय करेंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए सरकार ने कह दिया विस्तार से तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे और कोई भी हाउस का बिजनेस एनी एजेंडा ऑफ द हाउस विल बी डिसाइडेड ओनली बाय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेट्स यू ब्रिंग जस्ट एनी इन फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन टू द स्पीकर तभी होगा तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए मैंने अगर सरकार तैयार है नहीं आगे तो सरकार अगर तैयार है इस पर तो मैं चाहूँगा कि आप इसके स्पीकर साहब से बात करें नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर समझे नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट अरे आप क्या कर रहे हैं अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है उसको आप पास करने जाना चाहते हैं ये नहीं दे सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है धन्यवाद
0: Right, and there you see the Lok Sabha has been adjourned until Monday after the ruckus that kept unfolding on the floor of the house with the opposition demanding the resignation of Dharmendra Pradhan. That continues to be their demand and massive sloganeering that was witnessed once again in the parliament where Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged the opposition that there should be constructive debate and a lot of time of... The parliament had gone in ruckus and sloganeering, but the logjam that continues as the opposition kept raising those slogans, demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Once again, the parliament has been adjourned. Lok Sabha will now resume on Monday at 11 a.m. Another stormy session, and rather a stormy week, so as to say, that has gone by in parliament, where no constructive business has happened given what happened at that protest on Monday. Ever since, we've seen what the opposition has done in terms of staging that protest against the government. But even as the government has expressed their intent to say that we are ready to debate the issue of paper leaks and all that happened or as part of that protest on Monday, what followed subsequently. But the opposition that refuses to have any sort of debate with the government on this matter or any other, to say that unless and until the Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns, they will not allow any discussion in Parliament. Remember, Sonam Wangchuk has also ended his fast after 26 long days. And while the hope is that this matter will be discussed in Parliament, there will be constructive dialogue, arguments coming in from both sides. And what exactly can be the long-term solution, reforms that must be introduced. But no debate yet on this or any other matter, given the fact that the opposition says that unless and until Dharmendra Pradhan resigns, nothing will ensue.
2: सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए, क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7, श्री डॉक्टर अमर सिंह जी।
8: Honorable Chairman Sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of this statement.
5: Indian candidate
6: Istifa, Istifa.
5: On the demand of Bihar 2020.
6: Shiksha Mantri, Istifa do, Istifa do.
5: The report was
6: Shiksha Mantri, Istifa do, Istifa do.
5: 2026, when the House was not in session in for me to call the speaker.
9: Chor says Deepak.

0: Top story of the bulletin coming in from the key cabinet meeting. Prime Minister Modi, late into the night, sent out a video, a selfie video, to reach out to the students, to the protesters, and have promised that fast-track courts that have been set up, there will be, of course, apart from that, stringent action that will be added to the bill. Now, we know that a cabinet meeting that has that is starting. We are told Union Cabinet Briefing Public Examination Act Amendment Bill 2024 has gotten approval. So the cabinet meeting that had been on, now the crackdown on paper leak mafia has also got a cabinet approval. Bill likely to be tabled by Dr. Jitendra Singh in the parliament. Now, remember that the bill, the law already exists when it comes to any of these leak gate controversies or cases, and some of the investigations have been on. But Prime Minister Modi adding with regard to a fast-track court, also highlighting that strictest punishment will be given. Fines have been increased as per the current draft that has come in. The punishment, while has been increased, fine has been increased, and it goes into crores of rupees. So there is stringent punishment that has been added. Will this be enough for the protesters to end their agitation, to understand that the government is supporting them, or could this only escalate further, saying that it's not enough, the implementation is not enough? So that's the cabinet meeting led by Prime Minister Modi. We are shortly tracking, as the briefing is expected in a short while, about what precisely has been decided. The government has realized, ladies and gentlemen, that the youth, especially the ones who are protesting, are part of this agitation, are angry. They want certain reforms and assurances to come in from the government. There's a reason that Prime Minister Modi himself put out a video late into the night. Sonam Wangchuk has ended the fast with JP Nadda, Dr. Jitendra Singh, others in attendance. The minister is also meeting CJP representatives. The meetings and outreach have happened over the past few days. Negotiations have been on for days now. However, now it appears it could be reaching a conclusion. But the protesters and the youth maintain they need a bigger solid assurance. They're not convinced just by the promises coming in from our politicians and from the Netas. They want an assurance that can result in an implementation. So we'll shortly go across to briefing on the ground. So what we are expecting from the cabinet meeting and the briefing that's come, that's Minister Ashwini Vaishnav speaking. Let's listen in.
1: Namaskar Mitro, aaj ki cabinet briefing mein aap sabka swagat hai. Is it okay?
2: यहां से चेक ये वाला ठीक है
1: ठीक
2: ठीक नहीं हुआ है पूरा
1: ठीक है हेलो
2: इस माइक से बोल लेते हैं
1: जी सर आप आइए
2: कॉर्डलेस बंद कर ले
0: As they are getting ready for the briefing, it will be very pertinent about the details that the minister will mention over what's gotten approval in the cabinet meeting.
1: बाकी लोग कॉर्डलेस बंद करिए सारे लोग
3: ये ठीक है यहाँ पे स्क्रीन भी साथियों नमस्ते आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में दो बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई आज अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है फाउंडेशनल इंडस्ट्री है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना मैं दोनों स्कीम्स पे दोनों पॉइंट्स पे आता हूं पहला प्रोजेक्ट है जो कि हाँ पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बिल्लारी से होसपेट होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ अगर इस रूट को देखें दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स देर आर स्टील प्लांट्स देर आर पावर प्लांट्स देर आर सीमेंट प्लांट्स एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बिल्लारी टू होसपेट थर्ड एंड फोर्थ लाइन. आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है. यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है. यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है. आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा. कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा. ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है. करीब करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट, बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी. तो प्रोजेक्ट काफी तेजी से हो जाएगा. लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है, बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे. जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं. यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर टू हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन. कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है. दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है. जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है. और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकेंड नंबर पे है. स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%. हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5,000 किलोमीटर्स, 5,000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 135,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है. तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे. चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं. तो ओवरऑल आर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड. और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल. एज ऑल ऑफ यू अवेयर, पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी. कल या रादर आज सुबह तक इसके 1000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए. 1000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज. शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर. वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 odd पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें. कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मेजर कर रहे हैं. तो इस प्रोजेक्ट से 16 million ton जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, दैट इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 27 lakh trees. यानी 27 lakh trees अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा. सो दैट्स वाई इट इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 27 lakh trees. 31 lakh human days का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, और 149 crore लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी. सेकेंड मैं पॉइंट आता हूं, भव्य रसायन स्कीम. हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज. जैसे स्टील इंडस्ट्रीज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री. फाउंडेशनल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है दैट फाउंडेशनल इंडस्ट्री सप्लाइज मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज. अगर आपके पास देश में एक फाउंडेशन इंडस्ट्री स्ट्रांग है, तो उस फाउंडेशन इंडस्ट्री पे यू कैन बिल्ड मैनी अदर इंडस्ट्रीज. केमिकल इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिसमें If you have that industry in your country, then you can have multiple other industries which are based upon chemical industry. So that's why माने प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है. भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स. प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है. दुनिया के कई देशों ने की है ये. और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण. एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में. सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में. इन दोनों का ध्यान रखने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाउ दी गैशियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, राइट. इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. नॉट जस्ट दी लिक्विड एमिशंस बट ऑल्सो दी अदर गैशियस एमिशंस विच आर एमिटेड इन दी केमिकल इंडस्ट्री. देन सेफ्टी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्कर्स की सेफ्टी और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे. दीज 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स विल बेसिकली बी सेलेक्टेड थ्रू अ चैलेंज मोड. जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे. एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड 1,000 करोड़ रुपीज तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा. एंड सपोर्ट विल बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर विच आई सेड लाइक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, then very different quality of safety related infra, let's say healthcare mein, let's say fire safety se related, in sab ka burn safety se related, in sab cheezon ke liye bahut special isme dhyan diya jayega. Ye bahut important hai desh ke liye. Mane pradhanmantri ji ka jo atmanirbhar bharat banane ka sankalp hai aur jo bharat ka bahut bada viksit bharat banane ka jo bahut bada that big goal that we have taken for our country, usme आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब चीजों का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो सारी चीजें तैयार हो रही है जो कि बेसिकली विकसित भारत बनाने के लिए देश को तैयार करती है. 5 ईयर्स रहेंगे टोटल फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल आउटले 3,000 करोड़ का है. 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे. चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होगा. मिनिमम एरिया का भी इसमें डिफाइन किया है बिकॉज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन फैसिलिटीज बनानी है तो कॉमन फैसिलिटीज एक अच्छे सिग्निफिकेंट एरिया में बनना इजी रहता है. 8 स्क्वायर किलोमीटर का मिनिमम एरिया इसमें डिफाइन किया गया है. बहुत बेनिफिट्स होंगे और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ऑपरेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ऑपरेशनल कॉस्ट के बेसिस पे कॉम्पिटिटिवनेस जो आती है दैट्स अबाउट 20-30%. दिस एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट क्योंकि हम जब भी किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं पीपल टॉक ऑफ डिजेबिलिटी, कॉस्ट डिजेबिलिटी, एंड दैट कॉस्ट डिजेबिलिटी गेट्स एड्रेस्ड बाय शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विच रिड्यूसेज द कॉस्ट बाय 20-30%. वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना, इंक्लूडिंग पोर्ट से कनेक्टिविटी होना, रेलवे से कनेक्टिविटी प्रॉपर, इसके लिए स्पेशल वैगन्स बनाए जाएंगे, टैंक वैगन्स बनाए जाएंगे, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन आल्सो विल बी डन इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैनर, और ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजंस रखे गए. वेस्ट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंड सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम. तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म में एनडीए 3.0 में अब तक देश के विकास के लिए, देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जो फाउंडेशनल डिसीजंस हैं वो लिए गए, उन सब में समरीज इन फ्रंट ऑफ यू. 58 रेलवे प्रोजेक्ट्स मोर देन 2,60,000 करोड़ रुपीज, 37 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 3,69,000 करोड़ रुपीज के हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स करीब 1.5 लाख करोड़ रुपीज के, देन 5 न्यू एयरपोर्ट्स, उड़ान 37,000 करोड़ रुपीस, मेजर पोर्ट, शिप रिपेयर, शिपिंग इज अनदर फाउंडेशनल इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, देन रोपवेज के लिए, देन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विच इज क्लीन एनर्जी 71,000 करोड़ रुपीस, इंडस्ट्रियल पार्क्स 65,000 करोड़ रुपीस, पीएम आवास योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति को घर मिले उसके लिए पीएम आवास योजना 5,36,000 करोड़, जल जीवन मिशन का एलोकेशन इज अबाउट 8.7 लाख करोड़, कोल गैसिफिकेशन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी 37,000 करोड़, देन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल इंडस्ट्री, और आज जैसे आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट्स टू चाइना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देश में वो कैपेबिलिटी आना दैट वी कैन नाउ स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू कंट्रीज फ्रॉम वेयर ट्रेडिशनली वी हैव बीन इंपोर्टिंग दैट्स अ वेरी मेजर चेंज विच इज हैपनिंग नाउ सेमीकंडक्टर का फर्स्ट प्रोग्राम वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड द सेकेंड प्रोग्राम हैज ऑल्सो बीन अप्रूव्ड देन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आज आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है कुछ सो टोटल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 28 लाख करोड़ थैंक यू फ्रेंड्स आई टेक द क्वेश्चंस वहां पे बीच में चलिए
4: थैंक यू सर सो एज पर प्रोटोकॉल विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट रो लेफ्ट साइड
5: सर ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज से मेरा सवाल है कि जो ये दो आपने अभी फैसले बताए इसके अलावा क्या जिसका सबको इंतजार था कि क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे
4: नेक्स्ट
6: सर मैं निशांत हूँ ANI से मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
3: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज
4: नेक्स्ट
7: सर
4: हाँ
7: सवाल ये है प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश दिया पेपर लीक को लेकर देशवासियों को आश्वस्त किया और बड़ा मैसेज देते हुए कहा गया कि कानून लाया जाएगा तो एक कैबिनेट में उन्होंने कहा था
3: प्रधानमंत्री कितने अटेम्प्ट होते हैं
7: प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कैबिनेट में बिल
3: लाए
8: जाए सर मधुरेंद्र मैं न्यूज स्टेशन से क्योंकि कैबिनेट ब्रीफिंग पर सबकी निगाहें इसीलिए टिकी हुई थी कि कोई अमेंडमेंट या फिर कड़े कानून बनाने के लिए कोई बड़ा फैसला जो है सरकार आज लेगी तो जाहिर तौर पे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और मुझे लगता है कि अगर कुछ इस संदर्भ में हुआ है तो आप अवगत कराएंगे
3: चलो आगे चले
4: नेक्स्ट पेज सेकेंड
9: सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से सर जो आपने केमिकल के लिए आज कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है क्या सर ये जो 3,000 करोड़ जो लगाए जाएंगे ये उन जगहों को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पे अभी केमिकल का काम नहीं है जैसे या जहां पे ऑलरेडी जैसे भरूच जैसी गुजरात में जगह हैं वहां पे इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और सर जो 1,000 करोड़ आपने पर पार्क की बात करी है तो सर कितना परसेंट हम ये माने कि टोटल कॉस्ट का ये होगा जिसमें आप 1,000 करोड़ पास करेंगे थैंक यू
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं इसको नोट करके रखता हूँ एक साथ
4: यस
10: सर हर्ष कुमार फ्रॉम मिंट न्यूज़पेपर सर कपल ऑफ क्वेश्चन वन इज सर अबाउट दैट रेल नेटवर्क थिंग सो इज इट अ पार्ट ऑफ द दिस FY27 बजट ओनली और देयर इज एनी सेपरेट प्रोविजन यू हैव मेड आल्सो सिंस स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट साइड सर सेकंड क्वेश्चन इज सर रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट व्हिच इज हैपनिंग सो टुडे द CJP लीडर्स मेट JP नड्डा एंड MOS PMO सो एनी अपडेट इफ यू कैन शेयर विद अस लाइक व्हिच वाज डिस्कस्ड इन द कैबिनेट थैंक यू
4: नेक्स्ट एनीबडी फ्रॉम द देन राइट सेंटर 76
11: सर अटेम्प एक और ऐड कर लीजिए सर कोई कैबिनेट में ऐसा कोई बिल आया था सर जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया
3: ओ खेलता
4: एनीबडी फ्रॉम राइट साइड
3: पूरा खुल जाता है
4: आई एस 249
3: देख रहा हूँ कोई आंसर इसमें लिखा हुआ
4: वृंदा यस
12: पेपर है इसके
4: Yes, Vrinda.
12: Sir, Vrinda, from the print, can you tell how many FIRs cases have been filed under the existing anti-cheating law of 2024 and if there are any arrests or convictions that have been
3: Chalo, made? Main cabinet se related sare questions leta hun. Chemical new bhi ho sakte hain, brownfield bhi ho sakte hain. Totally dependent upon the state governments. State governments ke saath competitive challenge mode mein isko selection kiya jayega. और आपने ये सही कहा कि इट हैज़ टू बी लोकेटेड एट इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मैनर दैट्स द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इसीलिए इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि केमिकल पार्क्स प्रॉपर बने इन्वेस्टमेंट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस ये बेसिक इंफ्रा के लिए एक एक प्लांट में इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 करोड़ 20,000 करोड़ उस तरह का इन्वेस्टमेंट

0: gas shell, and then he saw a gun barrel being pointed towards him is when he started to run. And as soon as he turned around, he felt sharp pain on his back and around his elbow. And that's when he realized that he
1: How
0: was hit.
1: How is he now, Anand? What's his condition?
0: He is recovering at home. He was in Safdarjung Hospital for a day. And right now, all the pellets have been pulled out of his body. But the punctures, the wounds are still there. And yes, that's the current state.
1: There are three other kids. I call them kids because they're all 20, 21, 22. Could you give us a quick status check on how they are doing health-wise?
0: So, sources say that the person who was admitted to Lady Hardinge Hospital, he underwent two surgeries to remove all the pellets, and he's still recovering at the hospital. The Safdarjung victim who I spoke to, he is recovering at home. And the person who underwent two surgeries at Ames, he has been discharged. He was seen with the leader of the opposition a few hours ago, Rahul Gandhi. And he is, it is said, sources say that he will be seeking private treatment at another hospital because a pellet directly hit his eyes. And as of now, there is no update on the person who was admitted to Ram Manohar Lohia Hospital. Reports have only mentioned three persons' names. So we don't know any update on the fourth person.
1: Anand, thanks so much for bringing us that story. That's some solid journalism you did over there. Thanks so much for bringing us up to speed with that. In fact, we have a testimony of one of those injured protesters. Take a look.
2: I was moving around the protest site. Police were firing tear gas shells. Initially, cops fired in the air. Later, they fired towards crowd. I was hit on my back and right elbow. If I hadn't run, it could have hit my face. It felt like hot metal piercing my flesh. My back felt like it was on fire. Blood was dripping from the wound. I never expected I'd be shot.
1: All right, you have all the information now, but the man of the moment really is, and the ball is now in CJP's court. And we have the interview now with the founder, Abhijit Dibke. My colleague Sahil Joshi spoke with him. Listen in.
3: Abhijit Dibke is with us today. Abhijit, first of all, thank you very much for talking about this today. The first question is, what is the issue of the protest? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, फिलहाल तो सरकार मना कर रही है, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या यह आंदोलन थमेगा?
4: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ 20 जुलाई को जो हुआ, जिस ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस ने बच्चों के सर फोड़े, लड़कियों को पीटा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और डिमांड ऐड करी है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक तो उसकी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में जिन बच्चों के ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया था, वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए।
3: लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आपके यहां पर दिखे, राहुल गांधी वहां पर एक अलग प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?
4: मैं सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन सभी ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बाजू में रखकर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आए, और जो उन्होंने समझा कि जो देश का मुद्दा है, जो भविष्य का मुद्दा है इस देश का, उसके लिए वो सब साथ में आकर हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
3: लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है, उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की है, तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं, उस पर आपका क्या कहेंगे आप?
4: इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वॉज वेरी रिलीव्ड, और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सैक्रिफाइस किया है अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है।
3: लेकिन आगे का प्लान क्या, क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या प्लान होगा, क्या कुछ और भी मुद्दे हैं उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे?
4: अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए।
3: दो राउंड आपकी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, आपका प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर आया हुआ है, आज भी जो बातचीत हुई है क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या
4: संतुष्ट हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जस्ट डायलॉग शुरू ही हुआ है। मोस्टली उन्होंने कहा कि वो दो डिमांड्स पर अग्री कर रहे हैं, बट उस पर भी उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दिया नहीं है। उन्होंने कल फिर से डायलॉग के लिए बुलाया तो हम फिर से डायलॉग के लिए जाएंगे, बट हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन।
3: लेकिन एक और इस बीच जो चीज हुई है वो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उनका तबादला कर दिया गया, उनके जगह पर दो नए एजुकेशन सेक्रेटरी आएंगे, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक प्राइमरी एजुकेशन और बाकी इसके लिए आएंगे। तो अब आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे, कह रहे हैं कि भाई उनमें जो एक सेक्रेटरी है वो करप्शन में लिप्त है, ये मुद्दा आप कहां से उठा रहे, क्या यही मुद्दा रहेगा आप इसके आगे?
4: क्योंकि मुझे पता चला है कि उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन है, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उन्होंने करप्शन किया हुआ था, तो एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है, करप्ट लोगों को ये सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि कॉन्क्रीट एक्शन ले लो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, आप जो कर रहे हो वो ये करोगे और करप्ट लोगों को प्रमोट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट राइट।
3: धन्यवाद अभिजीत, आपने हमसे बात की इसके लिए।
1: All right, Abhijit Dibke there, sticking out for his demand for the resignation. Will that really happen? The next 24 hours could be the deciding factor. Protests, meanwhile, continue at Jantar Mantar and several places across the country. But amidst these continuing protests, government has announced a series of measures ranging from proposed changes to the law, fast-track courts, to an administrative reshuffle in the higher education department as well. Prime Minister Modi says that immediate priority was to ensure students did not lose an academic year and that examinations were conducted promptly. The Prime Minister has also called for fast-track courts to speed up the disposal of paper leak cases. The government is also considering tougher provisions under the law dealing with unfair practices in public examinations. Currently, individual offences can attract 3 to 5 years in jail and a fine of up to 10 lakh rupees, while organised offences carry higher penalties. But sources say that the proposed changes could further increase both imprisonment and financial penalties, particularly in cases involving organized paper leak networks. Alongside this, designated courts in Delhi, Nagpur, Aurangabad are set to handle cases under the fast-track mechanism aimed at reducing delays in trials related to examination irregularities. There's also been, like my colleague Sahil was mentioning, a change in administrative level. Vineet Joshi has been replaced as the Higher Education Secretary, with Naresh Pal Gangwar appointed to his post. The CJP, however, like I said, has questioned the appointment as well, levelling corruption allegations against the new secretary and arguing that the administration change does not address the demand for accountability. The protesters continue to seek Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation. So, even as the government moves ahead with the legal, judicial, administrative measures to address the paper leak issue, talks with protesters continue as well. But the demand, the moot point over here is that will Dharmendra Pradhan, will the education minister under whom two NEET paper leaks and several other leaks and mismanagement, including CBSE, happened, will the government take his resignation? That's pretty much where things are at the moment. But like I said in the beginning, this seems to be like the final act of sorts, wherein now we understand who will be more stubborn. Will the protesters on the ground be more stubborn, or will the government be more stubborn on its stand? Only time will tell. We have until 2 o'clock tomorrow to really get to the bottom of the story. Until then, stay tuned to India Today. Lots more coming up.

0: stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
2: The India Today Media Institute could not have been founded on a firmer footing. The India Today Group's strength in understanding and delivering high quality content is the very foundation of ITMI. We take pride in training our students to be exceptionally professional. So register now at www.indiatodaymediainstitute.in or call us on 956006545.
3: Upper caste, which are dominating India, was suddenly being challenged.
4: And that was a movement which actually changed India in many ways.
5: और क्या करेंगे जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे
6: बीपी सिंह एंड एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन बिकॉज़ हिज गवर्नमेंट ही थॉट वुड फॉल
7: आई आस्क यू द यूथ ऑफ इंडिया नॉट टू एंटरटेन दीस फियर्स योर इंटरेस्ट इज अपरमोस्ट इन माय माइंड आई आस्क यू फॉर ट्रस्ट एंड पेशेंस आई आस्क यू टू जॉइन मी इन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर
4: changed Indian politics in many ways and brought caste back openly into the equation of politics.

0: We have big exclusive news break. Delhi Police's facial recognition system, the FRS, has made a major revelation. Around 400 criminals with criminal backgrounds were spotted moving around the protest site at Jantar Mantar and nearby areas between July 20 and July 24. As many as 400 criminals were found present in and around Jantar Mantar. Their identities were established through the FRS system. Some criminal elements were also involved in the vandalism that took place in the New Delhi area on July 20. They have been identified through CCTV footage and social media analysis. This is a news break that we're getting in this that 400 criminals were present in the Jantar Mantar area between July 20 and July 24, and the police has been able to recognize them because of the facial recognition systems and the cameras that are present around them and through social media analysis. Arvind, हमें ये खबर पता चल रही है कि 400 criminal मौजूद थे July 20 से July 24 के बीच में जंतर मंतर एरिया में और ये facial recognition systems जो cameras है उसके through पता चला है पुलिस को.
1: बिल्कुल, देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है और इंडिया टुडे को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल से मिली है कि जो एफआरएस सिस्टम जंतर मंतर और आसपास में लगाया गया है उसके जरिए एफआरएस सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि जो लोग वहां पर आ रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, उसके अलावा आसपास, उनमें से अब तक 400 क्रिमिनल ऐसे 400 लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है. साथ ही साथ 20 जुलाई को जो वायलेंस हुआ था उसमें उसके फुटेजेस सीसीटीवी और सोशल मीडिया से जो फुटेजेस दिल्ली पुलिस को मिले उनसे भी जो आइडेंटिफाई किया गया उसमें भी कई क्रिमिनल एलिमेंट्स थे. तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो एफआरएस सिस्टम है उसके जरिए उसमें डेटा फिक्स होता है और उसके जरिए फिर अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स उसके आसपास गुजरता हुआ दिखाई देता है तो एफआरएस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है, उसके जरिए क्रिमिनल एलिमेंट्स की पहचान हुई है. एफआरएस सिस्टम इसलिए जंतर मंतर और आसपास जगह लगाया गया या क्राउडेड प्लेस इलाके में लगाती है दिल्ली पुलिस खासतौर से सेंसिटिव इलाके में कि अगर किसी भी जगह पर कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स घूमता हुआ दिखाई देता है या फिर कोई टेररिस्ट घूमता हुआ दिखाई देता है तो एफआरएस सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी देता है. तो ये कहीं ना कहीं जो एफआरएस सिस्टम लगाया था उसकी वजह से दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट और उसके आसपास के इलाकों में अब तक 400 लोग ऐसे घूमते हुए पाए गए जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी और 20 जुलाई को जो वायलेंस हुआ था उसके फुटेजेस खंगालने पर भी पता चला है कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे. जी,
0: क्या डिटेल्स है इन क्रिमिनल्स के बारे में जो हमें ये 400 क्रिमिनल्स मिले हैं? किस तरह के क्रिमिनल्स थे, कहां से आए थे, वो क्या बैकग्राउंड था इनका?
1: अब देखिए कुछ दिल्ली के रहने वाले हैं, अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और तीन नाम तो तीन की जो फुटेजेस है और तस्वीरें हैं वो भी इंडिया टुडे के पास है जिसमें एक का नाम मनोज है, एक का नाम साहिल सैफी है और एक का नाम रुबल है. ये तीनों को एफआरएस सिस्टम ने ही पकड़ा है और जब दिल्ली पुलिस ने इनकी हिस्ट्री संभाली तो किसी न किसी का कोई ना कोई क्रिमिनल पास्ट रहा है, क्रिमिनल हिस्ट्री रही है जो जंतर मंतर के आसपास घूमते हुए पाए गए. दरअसल दिल्ली पुलिस का ये कहना है क्योंकि एफआरएस सिस्टम लगा उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई. दिल्ली पुलिस ने पहले वो क्लेरिफाई किया कि एफआरएस सिस्टम में डेटा बेस होता है क्रिमिनल का और टेररिस्ट का. जो भी बड़े इवेंट होते हैं या सेंसिटिव एरिया होते हैं वहां पर वो एफआरएस सिस्टम सिक्योरिटी पर्पज से लगाया जाता है जिसमें डेटा होता है प्रॉपर क्रिमिनल का और वांटेड टेररिस्ट का और वो फिर अगर वहां से वो गुजरते हुए पाए जाते हैं या उस एरिया में रोमिंग करते हैं तो एफआरएस सिस्टम डिटेक्ट करता है और फिर एजेंसीज कंसर्न एजेंसीज को इसके बारे में जानकारी देता है. तो सिक्योरिटी पर्पज से एफआरएस सिस्टम का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस करती है. जी,
0: so we are finding out that because of the security system in place around 400 criminals were spotted in the Jantar Mantar area between July 20 and July 24. They were in and around from Delhi. We have gotten the details of these three criminals. Arvind, I will ask you to stay back as we go on to the next breaking news that we're getting in. This is from Sonam Wangchuk. He says that after 26 days of hunger, do I need to prove my sincerity? Do please watch and help spread the word. Find the full 22 minutes video out on his YouTube channel. And Wangchuk says that he has lost 11 kgs in 26 days. This is the first video message.
2: Yes, arrest me. Why is there this TV for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility.
3: What order does number you want? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो ऑर्डर लेके आओ हाँ
2: प्लीज ओपन आई एम गोइंग अरेस्ट मी इफ यू वांट.
4: दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ. अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था. मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा. मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है. बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ. मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखा कर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा. अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता? धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं. मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज्यादातर पर, क्योंकि फिजिकली लड़ के झगड़ के.
0: So that was Sonam Wangchuk addressing a lot of flack that he's been receiving because of the visuals that came out late last night where he broke his fast and JP Nadda was also in presence along with Jitendra Singh, MOS Jitendra Singh. And after that, he's saying a lot of questions were being asked to him. Why did he break his fast in this way? And he's saying, do I really need to give my character certificate after I have fasted for 26 days for the cause of the students? And he seems visibly upset because he's been questioning and there's a lot of questions being put forth for him right now. Well, for more on CJP and what's been going with the protest, we held a Gen Z roundtable in our newsroom today as well. So let's look at what are the views of the Gen Z in the newsroom.